आप भी विसाखी का पुरब मना रहे हो। कलगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ की अज साधना की सी विसाखी वाले दिन ते शब्द भी उन्होंदी है कलगीधर पातशाह जी का दोवे शब्द राग विच दास पढ़ेगा दोवे शब्द कलगीधर पातशाह जी देने पहला शब्द जो मैं पढ़ के सुना देवा क्योंकि आप जी कई बार समझ नहीं आवेगी कई तुका दी अस्थाई दी तुक है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है कि गुनन को पहार है अकाल उस्तत ओ वाहिगुरु गरीबां दा मालक है दीनन को दाता है ते दुष्टां दा ओ नाश करता है ते अपने सेवकां संतां दी ओ रक्षा करता है ते ओ गुनां दा पहाड़ है पहाड़ मतलब दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुनन को पहाड़ है तेज हूं को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर

सत्ता की बाण है कि बुद्ध को उधार है, सुंदर स्वरूप है के भूपन के भूप है, के रूपों के रूप है के कुमत को प्रहार है। ये शब्द रीत जो राग दास शुरू कर रहा है, राग है पटियाल। पटियाल भी दो तीन तरह गाया जाता है, बिलावल ठाठ नाल, मारव ठाठ नाल, ते अस्थाई है यदि दस मात्रा छत्ता। उस तो बाद इसे ही बारह मात्रा विच करके दास ने गाना है। सब तो पहला दस मात्रा झपता।

कारक है, साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है। आप जी श्रवण करो, उस तो बाद जो अगला राग होएगा वो होएगा समेदा राग शुद्ध सारंग। मेरी अवै विनती सुन लीजे, हे रव हे सस हे करनानिद, मेरी अवै विनती सुन लीजे। दूजा शब्द रीत राग जेड़ा शुद्ध सारंग विच तीन ताल विच होएगा, पहला जपताल ते इकताले विच आप जी श्रवण करो।

रहीमा अल्लाह तू गनी, तू कर्म करने वाला है, तू रहम करने वाला है, तू अल्लाह है और तू गनी है, सब तो वड्डा है। हाजरा हजूर, और जिथे भी मैं देखता हाँ उथे ही तू प्रेजेंट है, कितने भी दूर नहीं है। दरपेश तू मनी, तू मेरे बिल्कुल पास है। दरियाओ तू, दिहंद तू, बिसियार तू धनी, देह लेह एक तू दिगर को नहीं। कहते हैं तू ही देण वाला है, तू ही लैण वाला है, ते तो अलावा होर कोई भी नहीं है। तू दाना तू बीना, मैं विचार क्या करी। तू इतना दाना बीना है, इतना वड्डा है कि मैं की तेरे मतलब विचार कर सकता हां। नामे चे स्वामी बख्शंद तू हरी, तो अखीर च कितना वड्डा सानू हौसला, सानू प्यार, सानू तसल्ली, सानू कंफर्ट देने लिए आख्या है कि ओ बख्शिंद है। जो भी उसकी शर्म च पै जाता है झोली अटके, उसनू ओ बख्श भी दिंदा है, अते उसनू ओ नाम धन भी बख्शदा है। ए हन शब्द अर्थ। सो भगत जी दी जो इस शब्द दे विच मुख विचार है वो ए है कि अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम ही उना दा सहारा है, नाम ही उना दी टेक है, ओट है, अते नाम करके वो अपने आप नू कदे भी गरीब नहीं समझदे, वो अमीर हन। इस शब्द दे द्वारा असी इस हफ्ते दे विच जो गुरमत दा मोस्ट सिग्निफिकेंट, सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब तो ज्यादा अहम इशू है नाम, उस दे वेरियस एस्पेक्ट्स गुरबाणी दे विचों क्लैरिटी दे नाल समझण दी कोशिश करनी है ताकि असी उस तो फायदा उठा सकिए। नाम इस तरह है जिस तरह बॉडी एंड सोल हुंदी, जे बॉडी दे विचों सोल निकाल दिती जाए तो फिर बॉडी जो है वो सिर्फ एक मुर्दा लाश रह जाती, जे सोल निकाल दिती जाए। इसे तरह जिस जीवन दे विचों, जिस धर्म दे विचों, जिस प्रैक्टिस दे विचों नाम डिसअपीयर है, उथे सिर्फ एक डेड बॉडी रह गई है, सोल नहीं, सोल नहीं, वो खाली। तो धर्म दे विच अगर नाम नहीं रह गया तो फिर वो एक खोल ही खोल रह गया है, शैल ही शैल रह गया है, सबस्टेंस उस दे विचों गायब। और ए ट्रेजडी साडे नाल होई, साडे पास कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, फिलॉसफी रह गई है, इंस्टीट्यूशंस रह गई हैं, पर ओ लाइफ दी फ्लावरिंग जो कि सिर्फ नाम दे प्राप्त होन नाल, नाम दे अचीव होन नाल ही होनी सी, जिस दे नाल लाइफ ने ब्लूम करना सी, फुलफिल्ड एंड कंटेंटेड महसूस करना सी, वो नहीं। जबकि गुरबाणी दे विच एक एक पन्ने पन्ने में, एक एक शब्द दे विच, एक एक लाइन दे विच सारा टोटल एम्फेसिस नाम दे उत्ते ही, नाम दे उत्ते ही। आओ थोड़े जे प्रमाण उस चीज नू सपोर्ट करन लई आप जी नू मैं सुनावा, और बहुत ही ध्यान दे नाल एक एक पंक्ति नू प्रमाण नू आप जी ने सुन। गुरु बाबा जी आखते हैं

अगर नाम भी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई प्रैक्टिस, फिर एक सिंकिंग इंडस्ट्री है विच कीप्स ऑन कमिंग एंड गोइंग। नानक के कारज केवल नाम, इसको याद रख, नानक के कारज केवल नाम, सिर्फ नाम है नानक के घर दे। और महाराज जी हो रखते हैं कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, इसका मतलब बिकॉज नाउ डेज देर आर सो मैनी टेक्निक्स पीपल आर टीचिंग, प्रधान पदार्थ का मतलब दिस इज द सुप्रीम टेक्निक, द हाइएस्ट मैथड, द मोस्ट सक्सेसफुल मैथड कलयुग दे विच है, ते ओ नाम है ना योगा है। ना फिलॉसफी है ना ज्ञान है, सिर्फ एक नाम है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, प्रधान का मतलब सब तो ज्यादा उच्ची थान रखण वाला पदार्थ, जो सब्सटेंस है, जो टेक्निक है, वे है, मेथड है, महाराज जी कहते वो नाम है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जना उधरे, जिस दे नाल भगत जना का उधार हो जाता है। गुरु महाराज जी आखते हैं सारा संसार रोगी है, सारे संसार जैसे भी आ जाए, वी ऑल आर सिक, सारा संसार जो रोगी है तो वी आर नॉट एग्जेम्प्टेड, असी भी रोगी, हमें रोग मानुख को दीना, हमें दा रोग है। गुरु महाराज जी आखते हैं नानक दे घर दे विच अगर इस रोग की कोई दवाई है, सारा संसार रोगी है, अते रोग की अगर कोई दवाई है, संसार रोगी नाम दारू, कहते सारा संसार रोगी है, तो सिर्फ नाम ही एक दारू है, नाम ही एक इलाज है और कोई भी इलाज नहीं है।

0: फिर महाराज जी ने पूछिए, महाराज धर्म दे विच पूजा दा बड़ा स्थान है, पूजा धूप बत्ती बालो, जल छिड़को, फुल लियाओ, टलियां बजाओ, शंख बजाओ, बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें की जानी चाहिए। महाराज जी आखते हैं साडे घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं है, नाम जपना ही पूजा है। ए बाबा जी का जो नाम दे प्रति विचार आप जी सुना रहे हैं, कहते हैं
1: पूजा कीचे नाम त्याइए,
0: नाम त्योना ही पूजा करना है, जो नाम नहीं त्योंदा बाकी रिचुअल्स करी जाता है वो बाहर बाहर है, बाहर बाहर है, वो पूजा नहीं। पूजा उदो होंदी है जदों किसी का नाम दिल च बस जाए, वो पूजा होंदी है। कहते हैं साढ़े घर के पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है, कितना सिंपल है।

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। सो इतों अच समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असी नाम जप रहे हैं तो समझ लो असी पूजा कर रहे हैं। अगर असी रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीजिए, नाम ते आइए, बिन नाव है पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्थां के संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करने दे वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाउण दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजिस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसिस आख्या जांदा है। इज देयर इज सच थिंग? महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही। कहते हैं तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ भी नाम है।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि गुरु की सेवा के वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां थां थां थां से सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने के हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चिया उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी है, और किसी गल गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुने, भगत नामदेव जी आखते हैं, नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहने मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं वो ये कहते हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गए हो, केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहते साडे घर सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं, नानक के घर केवल नाम, नानक के घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जना उधरे सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है, नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहते हैं तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है। कहते नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा है। सो ए है नाम की इंपॉर्टेंस, समा समाप्त है। आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक आते सो हुण तक असा यह सुनिया है कीर्तन का पहला हिस्सा कि गुरु बाबा जी के घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले दी टेक छड़ी सोटी, कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम दी छड़ी तो बिना चलण दी कोशिश करदे हन ओ गिटे गोडे जरूर तड़ाणगे, ओ गिरणगे चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी दे नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए अते गाइए, फिर कीर्तन दा थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मनोवृत्तियों जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार में अपने अंदर टिका के रखो जो सुने। इतना कुछ सुनने तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगानु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हां दा इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु दी सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिरेकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करने की इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजों का इलाज है, एक किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान के अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिए है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिए है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिए है। जे इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीख रहा नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

मरना जाए ही जिन्हें विसरत राम, वो की करते हैं, मर क्यों नहीं जाते? बेशक वो मर जान तो कोई फर्क नहीं पैंदा जिन्हें राम विसरिया होया है। मरना जाही जिन्हें विसरत राम, वो जी के करनगे भी की, सड़नगे तपणगे जलनगे अते होर कर्म पैदा करनगे अपने आप ही, कहते बेहतर मरे ही जान। मरना जाही जिन्हें विसरत राम, जिन्हें राम विसरिया होया है। नाम विहून जीवन कौन काम, नाम तो बिना जीवन का कोई भी पर्पस नहीं है, कोई कम नहीं है। नाम विहून, नाम तो सखना जिहड़ा जीवन है, कहिंदे जीवन कौन काम, नाम विहून जीवन कौन काम। एक पंक्ति होर सुन वाली, आप जी सुन के हैरान जरूर होवोगे। कहिंदे हन

बाबा जी दे चरना चरिया दो चार दिहाड़े नानक सर ठाठ विखे बाबा जी दे चरना विच सेवा करदे रहे पति पत्नी ते नाल नाल हर वेले पंक्ति पढ़दे सन प्रभ के सिमरन रिद सिद नौ निद ते परमेश्वर दी बख्शिश होई क्योंकि महापुरखां दी गवाही सी साड़ी अरदास परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि साड़ा परमेश्वर नाल कोई संबंध ही नहीं पर नाम जपण वाले ओ तां हर वेले चेते रखदे हन सतनाम श्री वाहिगुरु उनां दी अरदास अकाल पुरख कदे बिरथी नहीं जान देंदा ता ए नाम जपण वालियां दी शरण विच आए सन परमेश्वर ने बख्शिश कीती महापुरखां दी गवाही।

तन दौलत संपदा कौन सांभेगा। बाबा जी ने आख्या भी पलिया पलाया पुत्र तेनू दे दिए। इना ने आख्या महाराज जिवें आप नू भावे। बाबा जी ने उस जोड़े नू बुलाया ते नाल हुक्म कीता कि हर वेले ए

अलपग हां कुछ समझ नहीं लगी। आखिया जिवे गड्डे दे हेठां दोने पहियां दे विचाले तुरा होंदा है ना, इस तरह आपा तुरा

सुखमनी दा नाम पानी दा तुरा बनना है। सेवका ने आख्या जी सत वचन, बाबा जी ने आख्या जिथे एक दो पाठ जा पंज सत पाठ सुखमनी साहब दे रोज करदे हो ना, हुण लगातार सुखमनी दी बाणी।

बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वालियां ने निरंकार नाल जोड़िया, क्योंकि आए तां असी निरंकार दे घरों हां, पर संसार विच आके परमात्मा नूं भुल जाने। ता ब्रह्म ज्ञानी महापुरख रब दे प्यारे ए सानू याद दिलाउंदे ने, बई तू नाम जपना है। ऐसे महापुरख सन बाबा जी जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी सेवा करके श्री गुरु नानक सचे पातशाह नू परतक प्रगट कीता। इतना कठोर तप आप करदे सन कि जेकर किधरे मन ने कह भी देना मैं अज नाम नहीं जपना, ते बाबा जी ने खूह दी डार उत्ते जा बैठना, खूह दी बन्नी जा बैठना कि मना जे नाम नहीं जपेगा सोवेगा आलस करेगा ते फिर तू खूह विच गिरेगा ते मर जावेगा। ऐसा डर पाके मन नू निरंकार नाल जोड़ना। बाबा जी 12:10 ते नितनेम विच आ जांदे सन, ते 12:10 ते जदो आपने सिमरन करना तां कलयुग ने नींदर नू भेजना भी जा इन्हां नू नाम ना जपन दे, ते बाबा जी ने केसां नू किली नाल बन लेना, आखना जदो नींद आवेगी ता केस खिचे जावणगे ते दर्द होवेगा, ता मैं फिर उठ के नाम जपन लग जांगा। साध संगत बोलो श्री वाहे गुरु। क्योंकि नाम जपन वाले हर वेले यही अरदास करदे हन, निरंकार ना विसरी ना विसारी आप दया नू आप दे करी। इस तरह अनेकां ही रूहां नू आप भी जपिया बाबा जी ने, ते दुनिया तो भी जपाया। जे किसे हिंदू ने आउना ता बाबा जी ने कहना बई गायत्री दा पाठ करिया कर, जे किसे मुसलमान ने आउना ता बाबा जी ने आखना भी 5 नवाजां गुजारिया कर। जो कोई तुहाड़ा धर्म है उस विच परपक रहो,

साड़ा तीसरा बचन है कुछ मांग आख्या तेरे एक कृपा कर दी जदों भी मैं कीर्तन करा ता इसे तरह मेनू अपने सोने दर्शन देंदे रहना। ते बाबा जी नू साहिब जी ने आख्या ऐ रिकी जी तुसी की लेना है। बाबा जी आखन लगे गरीब निवाज मेनू तो मंगना ही कोई नहीं आउंदा मैं तेरे कोलो की मंगा। साहिब जी ने आख्या नहीं रिकी जी कुछ तो मंगो नहीं मेरा दे साई मेनू मंगना नहीं आउंदा। तन गुरु नानक सचे पातशाह आखन लगे कुछ मंगो बई ता आख्या महाराज मंगना ता नहीं आउंदा पर कृपा कर दी इसे तरह जदो भी प्रसाद प्यार करा ते मेरा गरीब दा परवान कर लैण जिथे आपने भाई लालो दे कोदरे दी रोटी।

पर रब दे प्यारे तां रब नूं ही मंग लैंदे ने। तां इस तरह बाबा जी ने पूरने पाए कि किवें सिख ने गुरु ग्रंथ साहिब नाल प्रीत पाउणी, किवें हाजिर नाजर समझ के भोग लगाउणा। आप क्या करदे सन, जदों भी प्रसाद छकीए तां आखिए गुरु नानक तेरा दित्ता खारे, जदों भी पहनीए तां आखिए गुरु नानक तेरा दित्ता खादा पहन रहे हैं, तेरी बख्शी सदका सारियां खुशियां मान रहे हैं। तां इस तरह बाबा जी ने कई पूरने पाए ते जो कोई भी आंदा उसनू यही कहंदे भई एक दा हो जा। बहुते दरवाजियां दा प्रौणा भुखा रहंदा है, इसलिए बाबा जी हर किसी नू यही कहंदे सन भई जे तू गुरु ते प्रतीत लियावेगा, गुरु नाल प्रीत पावेगा, प्यार करेगा, तो गुरु तेरे सारे कार्ज सवारेगा। अचिंत काज करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, जिन्हां नू नाम प्यारा लगदा वाहिगुरु आप उन्हां दे काज सवार दे। इस तरह हर किसे नू जिवें भी होना बाबा जी ने उदी सुरती निरंकार दे चरणा नाल जोड़ देनी। इसे लई तां

0: बाद यह जन्म प्राप्त हो गया। भावे यह पढ़ने विच आया पे वह फलां जन्म विच सी, फिर मुड़ के आ गया, फिर आ गया, उसनों फिर जन्म पै गया, मिल गया। तो उन्हों थोड़ी जी खबर अपने पुराने जन्म की है, यह बारहों पढ़िया मैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह अटल फरमान असते गुरु साहब के अन्याई है ना, इन्हों फरमान इन्हों वचन प्रवचन सतगुरु वचन तुम्हारे अटल ने। वह कहते हैं कबीर मानस जन्म दुलंब है होए ना पारे बार। अगे फिर मिसाल है जो मन भर पाके होए गिरे और ना लगे डर। दोबारा यह जन्म प्राप्त नहीं होना, भाव मानस जन्म नहीं मिलना। मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया। एक बंदे के सिर में खारिश बहुत है, बहुत तकलीफ है, दोनों हाथों नाल खनूई जांदा है, खनूई जांदा है। कई बार तो खनूंदिया खनूंदिया नाखन खून भी लग जाता है, पर परेशान बड़ा है। आम एक खान है कि खंघ और खुरक ये किन्ना लकोलो ये प्रगट हो ही जाते। किसी सियाने ने बंदे उन्होंने कहा बड़ी तकलीफ में आ तू, इहदा कोई प्रबंध करके दस। सुनो वड्डिया ज्ञानिया इहदा तां कोई नहीं, मैं चल लूं, मैनूं इह दस कि अज इस नेर कोठरी विच मैं वड़ गया हां, इह तों बाहर किवें निकला। ऐडा महल ते इहदे विच नेर कोठरी विच मैं वड़ गया, मेरे कर्मां ने वार दिता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह बारह माह के आरंभ में कहते ने कि इंसान देख तू अपने वाल दो कारण करके तू प्रभु नाल विछड़ गया है। वो कहने लगा इंज कर, इस महल की जिस कोठी च वड़िया है तेरे सज्जा तेरी कंध है, कंध नाल हाथ ला के तुरिया रे। बापू जी भेजदा ना बुलाया करो इतने बैठ के क्षमा कर, मैं भी सॉरी मंगता जी। हां जी तेरे सज्जा च दीवार है। वो कहता मैं नेत्रहीन भी हां। वाहगुरु जी कहते ने हम अंधले अंत बिखे बिखराते, असि अन्ने हाँ, भाव साडा ज्ञानवान कोई नहीं, साडे ज्ञान दे और विरों दे चक्षु नहीं हां। मैनू दस कहता ले मैं तेरा हाथ दीवार ना लवा देना, ऐ तुरिया रे तुरिया रे तुरिया रे तुरिया रे, जिथे दरवाजा आऊ ना उस झट बाहर निकले। पर इहदे माड़े भागां नूं इन हाथ ते ला लिया, पर जिस वेले दीवार दे कोल आउण लगदा छड़े ना उसने खुर करन लग पैंदा, तुरिया तुरिया दरवाजा निकल जांदा। दरवाजा निकल गया, इन दो चार चक्कर मारे दरवाजा निकल गया, बेचारा अंदर तड़फ के मर गया। हुण तरीका यही है भई इस जन्म विच आके सतसंग जी मनुखा जन्म विच आके प्रभु का सिमरन बारं बार बार प्रभु जपिए, पी अमृत मन तन तरपिए, इथों की बाहर निकल होना। इसे जन्म ऊट नू कुछ नहीं पता, शेर नू कुछ नहीं पता, कुत्ते नू कुछ नहीं पता। देखो जिन्ने ज्ञानी ने जिन्ने विज्ञानी ने जिन्ने महापुरुष ने जिन्ने संत जन ने जिन्ने महात्मा ने जिन्ने गुरु पीर होए हैं सारे यही समझाते हैं। पर यदि हाल सत्संग एक बार अदमान आखो सतनाम शिवाय, यदि हाल उस बंदर वर्गी है जेन मार्केट मुश्की अनाज की मन बौरा रे। एक बर्तन है उसका छोटा जहा गलमा है, हेठो बड़ा लंबा चौड़ा है, बंदर ने देख लिया कि ये खिलां पईया ने दाने पे ने, उन हाथ पा लिया ते हाथ पा के मुठ पा लिया दाने, हुण मुठ जा बाहर नूं कढ़दा वो नहीं निकलती। मरकट मुश्ती अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार छूटर को सहसा परयो। छड़दा नहीं दाने छड़दे ते हाथ निकल सकता है, पर दाने पकड़े मुड़ समेत कढ़नी चाहता नहीं निकलता। हुण होया कि गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने नाचो घर घर द्वार, मार वो लैके ना नचता फिरता घर घर द्वारे द्वार जाता है, छूटर को सहसा परयो। इसे जन्म में आके इस गल का पता लगना साहब सिंह जी, اور اسے جان بھی کی چھٹکارا ہونا. آخو ستنام
1: شری
0: تو جی اے سنبھالیا کوئی نہ پھر تو بہت مشکل ہو گئی. نرگن یار آنے سس بھی آخو سر تم یاد ہے
1: نرگن یار آنے سو پر سدا سما زندگی جیت رکھ
0: اسے جنم آ کے فسنا ہے اسے جنم چھٹکارا ہونا ہے. فسنا کیویں جی جی بندر کلا فس گیا مر کر مشتی اناج کی من بورا رہے جینی ہاتھ پسا چوٹی کو سرسا پڑے. جنہ بھی آپ یاد مقدس منا رہے ہیں پویتر یاد راجا صاحب جی یا پریتم داس جی یا بڑے مہاپرش بابا جواہر سنگھ صاحب جی انہوں نے یہی گل تت کی سمجھائی ہے جیڑی بانی گرو جی نے سمجھا دیتی ہے انہوں نے جرا سرل کر کے سمجھا دیتی ہے کیونکہ ڈیوٹی جی لگی ہے انہوں نے تھی سمجھا کرنی ہے. وہ کہتے ہو دیکھ انسان دولت بڑی کٹھی کرتا پیا ہے دما دے پیچھے لگیا ہی پیا ہٹتا ہی نہیں رات نو ایک تو دو کیرتن تین تو چار کیرتن چھ تو سات کیرتن سات تو نو آستہ دیوار دوپہرے گیارہ تو بارہ کیرتن پھر کوٹھالے کا آ جائے تو وہ نہیں چڑھنا کیونکہ آ رہے نے تڑا تڑ آ ہی جاندے نے کوٹھالے میں ڈھیر لگ گیا جی شام نو پھر سوجر دی چونکی ہے مرن دا بہانہ تے آپے پیا کردا چھوٹن کو سہسا پڑے. اس لیے بابا بھگوان داس ایک بچن کرتے ہیں کہندے نے دولت دان دیوان مکان نادان گمان نائن کرو تن دولت دیوان میں نے حکم حاصل میرا فرمان چلے. دیکھو نا گرو نانک دیو سچے پاتشاہ جی نے کیسا پیا بچ رکھ کے کہندے نے جے جگ چار یار جا انسان دی یہ خواہش ہے

पूर्ण प्यार ते सत्कार विच गज के आखो सतनाम। साधु कौन है जिन्हें मन नूं साध्या है, महाराज मैनू उन्हां दा मेल करा। श्रोमणी कमेटी ने भी अरदास विच

0: कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर हरी पिछे पिछे फिरदा पे कबीर
1: एक कड़ी पौड़ी
0: गुरु जेड़ा है वो सिख नू प्यार कर लगता है।

जग में परवरे निरंकार आप गुरु नानक दे रूप विच संसार ते प्रगट होए ते फिर वही गुरु नानक अपने प्यारियां दी संगत विच अपने प्यारे गुरसिखां दे विच दर्शन दे रही है ते शब्द रूप विच बैठा होया अपना विचार दे रहा। कदे साहब कलगीधर पातशाह ने कहा सी गुरसिखां नूं, सिखां ने पुछिया महाराज तुसीं तां शरीर करके साथों अलग होना लोड़दे हो, असी की करांगे। साहब कहण लगे की चाहुंदे हो कि महाराज दर्शन किदे करांगे, गल्लां किदे नाल करांगे, पूजा किसकी करांगे। साहब कहण लगे पूजा तां तुहानूं मैं पहलां ही एक अकाल दी समझा चुका, पूजा अकाल पुरख दी करनी, मेरा दर्शन करना है तां खालसे दा दर्शन करना, मेरे नाल गल्लां करनियां ने गुरबाणी दी विचार करनी, गुरु के वचना दे अनुसारी होगे, गुरु के वचना नूं ध्यान नाल पढ़ो सुनोगे, गुरु नाल गल्लां करदे जापोगे। इत्थे भाई साहब कहिंदे ओही वाहिगुरु अकाल पुरख गुरु दा रूप धारण करके प्रगट होया ते फिर शब्द विच समा के बैठ गया ते संगतां विच गुरसिखां विच बैठ गया। जद ऐसा होके बैठा है तां गुरसिखां दी मन्नेगा, साध संगत दी बेनती ते अरदास प्रवान भी करेगा, उन्हां दी लोड़ां दा ख्याल भी करेगा। भाई साहब कहिंदे नूं करन कारण समर्थ वाहिगुरु साध संगत दा करे कराए, सारा कुछ उहदे भंडारियां च भरिया पिया पर साध संगत दा दे दवाया, साध संगत जिन्हू चाहे दवा देवे, जो चाहे लै लवे। पार ब्रह्म गुर रूप होए साध संगत गुर शब्द समाया, पार ब्रह्म गुरु दा रूप होकर के साध संगत विच गुर शब्द बैठा है, जिसनू लोकां ने जग भोग जोग ध्यान कर अनेकां कर्मकांडां दे नाल अनेकां जतनां दे नाल पूजा परे ना दर्शन पाया, किसे नूं लब्भा नहीं, किसे नूं दर्शन नसीब नहीं होए, गुरसिखां ने उहनां नूं लभ लिया, संगत विचों लभ लिया, गुरु शब्द विचों लभ लिया, और ऐसा लभिया इन्ने नेड़े हो गए, इन्ना प्यार पा लिया, इन्नी सांझ पा ली, प्यो पुत्रां वांग एकमेक हो गए। और फिर एक होर गल, वो जग भोग जोग ध्यान करने वाले तो कई बार संसार नूं छड्ड के बाहर भटकते नजर आए, गुरु का सिख संसार च रहिंदिया होए, घर बार च रहिंदिया होए, परस्पर सत्कार दा अधिकारी बन के एक दूजे विच सतगुरु दे दर्शन करदा होया एक दूजे पैरी पैंदा नजर आउंदा, और इसे संसार च रहिंदिया होए प्रभु दे प्यार नूं मानदिया गुरु दे प्यार नूं मानदिया होया माया विच उदास रखाया। पर एक गल है, जे तां गुरु नाल गल्लां करनियां ने ते गुर शब्द नूं विचारांगे, जे गुरु के नजदीक होना है, गुरु नाल विचार दी सांझ पाउणी है, प्यार दी सांझ पाउणी है ते गुर शब्द दी सांझ भी पाउणी पैंदी। लेकिन जे कदे गुरु नूं प्रसन्न करना होवे ते महाराज पावन बाणी च कहिंदे ने, साहिब कहिंदे ने गुर सिखां अंदर सतगुर वरतै, जो सिखां नूं लोचै सो गुर खुशी आ, जिहड़ा गुरसिखां नूं प्यार करदा गुरु की खुशी लैंदा, विच संगत हर प्रभ वसै जी, इसे संगत च गुरसिखां विच वाहिगुरु आप वसदा, इन्हां दी खुशी गुरु की खुशी पार ब्रह्म दी खुशी। इसे करके गुरमुखां गुरसिखां सत्संगियां ने गुरु प्यार वालिया शब्द विचार वालिया नाम की कमाई वालिया की खुशी लैण दा यतन कीता सर। और भाई साहब पुन भी बड़ा कहिंदे, भाई साहब कहिंदे ने जे किते गुरसिखां दी सेवा च लग जाइए ना ते गुरु वालों बड़ियां खुशियां प्राप्त हुंदियां ने, एडा वड्डा पुन है जिहड़े उसले प्रचंड पुन्नां दीआं गल्लां सन, जिहड़े जतन लोग प्रभु प्रसन्नता दे करदे सन,

कह के उसने जितना जोर सी उसने बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जकारा गजाया ते भजदे हो जिहड़े फौजी सन बोले सो निहाल सुन के सत श्री अकाल कहिंदे हुए वापस मुड़ आए और उस चौंकी ते फिर उन्होंने कब्जा किया पाकिस्तान की हार हुई। ये जकारा सतगुरां ने बख्शे ही ऐसा है। एक ए जकारा एक किसी ने नकल भी की सीगा बेचारा मद्रासी कहन लगा हम भी जकारा बुला सकते हैं। लगा जकारा हिंदी तो बेचारे चंगी तरह बोल नहीं सकते तो जकारा बोले सो निहाल ते पाकिस्तानी कहन लगे सिंह नहीं लगता इन्होंने तो एवं ही आप ढा लेना सिंह होंगे सिंह का जकारा तो होर ही होंगे वास्ते कहते बंदूकों की लोड़ कोई नहीं उदा ही लम्बे पालने आप जाओ ये सिंह नहीं आए जकारा सिंघा वाला चाहिए है। तो बोले सोनियाल भी इकट्ठे और सत श्री अकाल भी इकट्ठे शोध पढ़ते हैं।

जैसे कपने कपड़े बुनने वाला जुलाहा एक एक तागे की तंत को जोड़ जोड़ कर कपना बनाता है, पर ऐसा भी हो जाता है जब ये तागों की तंदें उलझ जाती हैं तो कपड़ा बनना रुक जाता है। जो कपड़ा बनाने का कार्य है रुक जाएगा। जितनी देर तक इन उलझियों हुई तंदों को कोई सुलझाता नहीं, अपने आप तो जे उलझने मुकेंगी नहीं, सुलझाना ही पड़ेगा। इसको सुलझाने के लिए जिसको सुलझाना आता है वही सुलझा सकता है, पर जितनी देर ये सुलझेंगी नहीं आगे का काम बंद हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही मालूम होता है हमारे जीवन में उलझने ही उलझने हैं। वो सभी उलझने हमारी अपनी ही डाली हुई है। मुर्शे का जो बर्ताव है, स्वभाव है, इसने हमेशा ही सदा ही उलझने डाली है।